एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: ना।
1: अरे हम लोग आनी माँ 10 बजे कच्चा।
2: इस समय को साथ माँ जितू सुनचा दी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तरफ जाने बाटो माँ कुना को साइड माँ
3: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
0: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: ठाउँ।

एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: पड़ी साइकिल कर गयो
1: साइकिल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ एउटा मोटरसाइकल किन्दियो बुहारी ल्याएर देखाइदिउला
0: किन्दियो ल

0: भरी सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटा कन्फ्युजन ग्यास द सोलुसन इट्स द कुल धुली डट कम ग्यास द सोलुसन इट्स द कुल धुली डट कम
1: टु जोइन द नेपाल फिल्म इंडस्ट्री योर फर्स्ट स्टेप एभरेस्ट फिल्म एकेडेमी वेलकम
2: एभरेस्ट फिल्म एकेडेमी नयाँ बानेश्वर मिन भवन

0: पहले हम लोग अनिमा 5 बजे
1: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

को बोलो श्री पशुपतिनाथ को श्रद्धालु भक्तजन यह संसार में केवल दुईटा चीज मात्र सत्य रहेछन् शाश्वत रहेछन् एउटा जन्म अनि अर्को मृत्यु अरु सब

बोलो श्री विन्नवासिनी माता को हरे। सारा ब्रह्मांडले माने का देवता का पनी देवता कैलाश वासी श्री शिव शंकर भोलेनाथ को एक महिमा करूं, एक गुणगान गाऊं, एक भजन कीर्तन करूं।